शुभ प्रभात, जय श्री सचिदानंद। समा आदरणीय श्रोतागण, प्रत्येक दिन प्राप्त कालीन समय बिहान 5 बजे देखि 5:30 बजे सम्म रेडियो